थोरे नेपाल ख नेपाल भाषे समाचार जी उपेश पाखेन्जिना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्स सौ पिकु द गुलाथो द्वादशी सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपा या सभाप्ति रवि लामेछाने बौद्ध लिप या सुई द या व्यतीत या ख जक लाना मगाइगु धैदिगु दो आ सुई द या मागु ज्या राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाती वगु न वेक्ल नितना दिल पार्टी या केन्द्रीय दुजपिन ततया गोसागोगु नीति संगठन व नेतृत्व ज्याजो कथ नापाङ्गु श्रृङ्खला कोचाकु सेम हिग सभापति लामिसाने देशे देश ल हागु भाला पुङ्केगु नेतना दिल आम नागरिक भलसा याना रासोपया त तरुङ्गु दल या रूप पलिस यागो धया दिसे सभापति लामिछाने सक मनु या त भलुसा बि पयु कथ आ थगुल हाती वगुली अथे कथ नेता व कार्यकर्ता या त दुग्यङ्क ज्या या त ब ब्यादिल वैगु स्थानीय त या निर्वाचन या त तातया रासोपाया नेता व कार्यकर्ता गाँ गामे वनिमागु खे वैक्लम ब ब्यादिल सभापति लाम्छाने सरकार यागु भिङ्गु सेलागु ज्या त दुग्यङ्क जनता या त थुके त इनाप याना दिल प्रतिनिधि सभा या मुज्या थौ चोनी तेङ्गु दु निनेसिया छता इले चोनिगु मुज्या उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बन्धी नेस या लिस स्वापुदुगु मन्त्री बिगु ज्यादलादु मुज्या प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह या पाखे अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले संवैधानिक निकाय या पदाधिकारी या पारिश्रमिक सेवा या शर्त व सुविधा सम्बन्धी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त दफा दफा सल या नीति स्वापुदुगु समिति छेगु प्रस्ताव न्यवैगु ज्यादलादु अथय परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल राहदानी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त दफा दफा छलफल नीति स्वापुदुगु समिति छेमा धैगु प्रस्ताव न्यवैगु ज्यादलादु अथे महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बाधी मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार नियन्त्रण नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 प्रस्ताव न न्यवैगु ज्यादलदु अथेहे थौये थिति न्यागु संसदीय समिति या मुज्या चुनी तेङ्गुदु अन्तर्राष्ट्रिय स्वापु व पर्यटन समिति कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पूर्वाधार विकास समिति विधान व्यवस्थापन समिति व सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधान समिति या मुज्या चुनी तेङ्गुदु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ तधङ्गु सिँचाइ आयोजना कृषि उत्पादन व लजगा होता तब्याकाकु नेतना दिगुदो सुनसरी मोरङ सिँचाइ परियोजना स्वेधुङ्का नहर धैगु विकास जक मकु समाज या त हिकेगु छगु पला नापजुगु वेक्ल थाथिका दिल मन्त्री श्रेष्ठ एकत सुनसरी मोरङ सिँचाइ परियोजना द पतिक चिनपेङ्गु अर्ब शिव अपो दा तुइगु कथ कृषि लब चुलाका बिगु नेतना दिल प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा न्याय सम्पादने बारो बेन्च या महत्व जागु पला दुगु नेतना दिगुदो तनहु जिल्ला अदालत बार एक्काइ दमोली गोसागोगु ज्याजो स वेक्ल न्यायिक सम्पादन सकल या मङ्का ज्याजुगु नेतना दिल प्रधान न्यायाधीश शर्मा न्यायालयप्रति नागरिक या भलसा लेङ्का ते त न्याय सम्पादन प्रक्रिया त लिचो लागेको कथ ज्या या मागु खे भव्या दिल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नायक नारायणमान बिचुक चे रोहित सत्य जनप्रतिनिधि थगु स्वार्थ सिप चेदना दे व जनता नीति ज्या यामा धैतिगुदु खोप नगरपालिका मिग गोसागो गु छगु ज्याजोस नाय बिचुक चे थथे धैतिगु ख जनता या भावना त दुग्यङ्क नाला कास जक देशे बालागु लिचो प्या वैगु न वेक्ल कना दिल शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विद्यालय शिक्षा विधेयक या त सरकार नापाङ्गु प्राथमिकता तया ज्या याना चुङ्गु नेतना दिगुदु मन्त्रालय मिको गोसागोगु विद्यालय शिक्षा विधेयक विशेष सरकार टुपी निकाय या प्रतिनिधि नाप या परामर्श गोष्ठी वेक्ल ए निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी देखेगु न नेतना दिला
भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल भूमि सम्बन्धी पङ्ग चेङ्केत सुङ्ली तहय सरकार जिम्मेवार जुइगु नेतनादिगुदु कञ्चनपुर या दोधारा चाँदनी नगरपालिका मिग गोसागोगु ज्या जोसँग वेक्ल भूमि सम्बन्धी पङ्ग चेङ्केत सरकार ज्या इनाचुङ्गु नेतनादिल नेवा दे दबुया पुलाम नोकु विजय प्रकाश तन्दुका हे निद या बैसे मिग आका झाका मन्त मिग सुते सासला थाकुथे जुइव वास या गु छोले वेक अस्पताले मधुगोख मधुमो तन्दुक या त मिग अन्तिम संस्कार या थङ्कुदो मधुमो तन्दुकार त आइलनिसे नेवा भाषा खेले सक्रिय जुया चुना दिमुख वेक या त धिकमका नितिन तन्दुकार मि पा त गुख मधुम तन्दुकार या जहान निमका ओ निम म्यादी पलाञ्चोक भगवती द या मूर्ति चहती ओ गुदु मिहिक शनिबार शनिले आरती यागु इले भगवत्या मूर्ति चति वगु खङ्गु धागु ख दे से छुन कथाया दैवी विपत्ति ओ रान्तिक सङ्कट वे तेनकि भगवत्या मूर्ति चति वैगु मन्दिर व्यवस्थापन उपसमितिया फुलाम खोजी किरण श्रेष्ठ सञ्चार कमी पिन्त जानकारी व्याधिको ख वेका कथ दे दुनि दैवी प्रकोप ओ रान्तिक सङ्कट इले भगवत्या मूर्ति चति वेगु या भगवतीय मूर्ति वङ्गु दे या जन्जी एन्दलुन या इले 2081 साल या खुसीबा वगु इले 2072 साल या तफुखा या इले 2058 साल दरबार हत्याकाण्ड लिसे 1990 साल निसे आतक तको मछि दैवी प्रकोप ओ रान्तिक सङ्कट वे तेनगु इले थते चटी वेगु यागु वेक्ल धयादिगु ख नेपाल या जातीय संस्कृति राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय नायस कुमार ब्लोन तामाङ हाक्न त्यानादिगुदो जातीय संस्कृति सङ्ग्रहालय उइगु सोदय निते तामाङ हाक्न नाय पदे त्याकादिगो ख त मुज्या राणा बहादुर थामिया त नापाम नोकु ल्यु नोकु गङ्गामाया धिमाल मु छ्यान्जे इन्दिरा जिमी छ्यान्जे कथ इन्जिनियर सानुबाबु प्रजापति दामरी कथ रूपबहादुर योन्जन वो ल्यु दाबरी कथ भीम प्रसाद योङ सुराहाङ या त ल्योगु ख अथे दुजले गोविन्द राम चेपाङ बिलाम मोक्तान राधाकृष्ण बस्नेत डाक्टर पशुपति न्यौपाने प्राध्यापक डाक्टर धनबहादुर कुँवर कृष्णा कुमारी सुब्बा उर्केन दोर्जे लामा छरी चन्द छन्त्याल व टङ्कप्रसाद पाण्डे निर्वाचित जुगुदु नेपाल या बहुजातीय बहुभाषीको बहुसांस्कृतिक मत्सिका या त संरक्षण व प्रवर्धन यागु आज यहाँको गु सङ्ग्रहालय या नुगु नेतृत्व तिथि जातीय प्रतिनिधित्व दुथ्याका तगुदु नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया न्याको गु राष्ट्रिय त मुज्या भाद्र 1920 गते गोर्खा जिल्ला मिलन बस्ती जुइदुङ उइले थिति प्रदेश जिल्ला त मुज्या जुया चङ्गुदु थोहे चोले छुदी हने कोचागु बागमती प्रदेश समिति या त मुज्या पत्रकार विराज काजु राज उपाध्याय न्यायुष्य छिन सोम दुज दुगु कार्य समिति सर्वसम्मत लिगुदु सर्वसम्मत त्यागु कार्य समिति नोकुस खुल्ला पाखे विनोद श्रेष्ठ हो नुकु मिसापाके कुसुम ब्रजाचार्य छ्यान्जे सोनिराज साके दाँवरी कथ श्याम था श्रेष्ठ या त लियोगु ख अथे छ्यान्जे खुल्ला पाखे विश्वनाथ ताम्रकार ओ लियो छ्यान्जे मिसा पाखे विष्णुदेवी महर्जन या त लियोगुदो दुजोले छसी कथ सुरज मानेन्द्र राजु महर्जन जुजु मदन राम कर्मचारी पुनमा श्रेष्ठ कर्मचारी दीपक काश्व श्रेष्ठ ओ ज्ञानदेव श्रेष्ठ या त लियोगुदो पुलाङ्गु नेवा बस्ती गोले लिचिपकालीन इया नासोदय या द्योछे पुनर्निर्माण जुगुदो ए महानगरपालिका आठवटा गोल स्थित नवाली ट्वाली चुङ्गु लिचिपकालीन नासोदय या द्योछे उलिज्या जुगुदो द्योछे उलिज्या यनादिसे ए महानगरपालिका कार्यवाहकको प्रमुख सुनिता डङ्गल ए महानगरपालिका अमूर्त वो मूर्त सम्पदा संरक्षण नीति ए महानगर ज्याना चोनागु जानकारी ब्यादिसे थो झोले आतक या दुनी चेनिगु अमूर्त व ने च्यागु मूर्त सम्पदा संरक्षण ज्या जुई ढङ्कगु जानकारी ब्यादिल पति न्याना न्याइगु जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जेई लुए पाखे आप्ल मनुत सिना चोङ्गुली परिवार कल्याण महाशाखा वाचाका चुने त इनापियागुदो स्वास्थ्य सेवा विभाग या परिवार कल्याण महाशाखा या लिपाङ्गो प्रतिवेदन कथ दे या निगु जिल्ला या
ने गुगु स्थानीय तसँग चे म लोगी खनी दुगु ख छगु विज्ञप्ति कथ मासाका पुष्टि यापी लोगी मध्ये चे खुगु जापानिज इन्सेफलाइज रोग विरुद्ध जेई खोप मकागु धयातगु दु आतक थोले पाखी निसम्म मुनु त सी धङ्कुगु दु थोले पाखे झापा झिम कैलाली ओ मोरङ्गे हेम ढेम सप्तरी ओ कञ्चनपुरे खुमखुम चितवन सुनसरी ओ नवल परासी पूर्वे न्याम न्याम लोगी दुगु धागुदु

पाँचसम्म पक्का गर्नार तथ्य तसु परिणामक आधारमा जिम्मेवारी निभालार राष्ट्रिय स्वास्थ्य सिस्टम फेर्लार मा स्थानीय तह नेतृत्व बनालार तसु जिल्लालाई राष्ट्रिय अंशो अन्तर्राष्ट्रिय सिक्लार तसु नमुना केन्द्र रूपमा विकास गर्लार कट्टरता जनालार छिग लामखुट्टे कप्टिकु सर्लार जापानिज इन्सेफलाइटिस जेई रोग लाग्लार तसु मर्लार संख्या बढीधर लखेको एकर खतरामा सतर्क तसु जोगीको बसेले परिवार कल्याण महाशाखै सेब्बेमा अनुरोध गर्न रचेक स्वास्थ्य सेवा विभागभित्र परिवार कल्याण महाशाखा पाछल्लो प्रतिवेदन अनुसार देशक 25 जिल्ला 59 स्थानीय तहमा 80 प्रयोगशालामा पुष्टि अख्ल जापानिज इन्सेफलाइटिसक बिरामी देखन जैरेली आज एकता विज्ञप्ति जारी गर्दी महाशाखै पुष्टि अख्ल बिरामी मध्ये 86% जेई रोग जेई खोप नै लाइल जनाएर छिक यस

रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द्र मिश्रसँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हमरा सभक समाजके प्राविधिकसँ अधिक नैतिकता आचरण आ इमानदारिताक अधिक आवश्यकता रहल बतौलनि अछि। नेपाल जनप्रशासन संघ द्वारा आयोजित हेम बहादुर मल सम्मान वितरण कार्यक्रमके सम्बोधित करैत ओ प्राविधि आ क्षमता अन्य सँ लऽ कऽ सेहो उपयोग कयल जा सकबाक मुदा आचरण नैतिकता ईमानदारिता अपने अन्तःस्करणके विषय भेल बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल प्राविधिक विकास आ परिवर्तनक गति आजुक युगमे तीव्र भेल उल्लेख करैत कृत्रिम बुद्धिमत्ता डिजिटल शासन विश्वव्यापीकरण आ नया आर्थिक संरचनासँ प्रशासन आ व्यवस्थापनक परम्परागत अभ्यासकेँ समय सङ्ग बदलि देल गेल बतौलनि। ओ नेपाल जन प्रशासन संघ आ साल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एक सफल प्रशासक तथा व्यवस्थापकक रूपमे स्थापित स्वर्गीय हेमबहादुर मल्लक योगदानकेँ सदा स्मरणीय बनेबाक लेल सम्मान कार्यक्रमकेँ एहि तरहे निरन्तरता देब खुशीक विषय भेल कहैत राज्य पेशागत संस्था सार्वजनिक संस्थान आ समाज बीचक सहकारसँ राष्ट्र निर्माणक लेल आवश्यक सकारात्मक मूल्य सभके संस्थागत कऽ सकबाक बात बतौलनि। राष्ट्रपति पौडेल हेम बहादुर मल्ल सम्मानसँ सम्मानित भेनिहार डॉक्टर रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठ आ रामेश्वर प्रसाद खनालके बधाई देत हुनका सभके अपन सार्वजनिक सेवा प्रतिके समर्पण राष्ट्र निर्माण प्रतिके योगदान सम्मानित भेल स्पष्ट कयलनि। प्रतिनिधि सभाक आजुक बैठक में सांसद लोकनि बारा जितपुर सिमराक 3 वर्षीय बालिका गरिमा चौधरीक जघन अपराध पश्चात भेल हत्याक विषय में सरकारक ध्यानाकर्षण करबैत दोषी ऊपर कड़ा कार्यवाहीक मांग कयलनि अछि। सांसद लोकनि जघन्य अपराधक घटना के बलजफ्ती व दबावपूर्ण रूप में मिलापत्र नहि कराकऽ विद्यमान कानून के संशोधन कऽ भेलाक बावजूदो हद धरिक कानूनी सजा सुनिश्चित करबाक मांग कयलनि। एहिना 70 में 2 वर्षक बालिकाक परिवार के सदस्य हत्या भेल विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत दैनिक भऽ रहल एहन घटना सँ बेटी सभक घर विद्यालय समाज में असुरक्षित रहल प्रति सेहो सांसद लोकनि सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। सांसद लोकनि काठमांडूक शंखमूल में रहल एक हॉस्टल में रहैत आयल दांगक 22 वर्षीय बसंत कला थोकिक मृत्यु भेल घटनाक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत निष्पक्ष छानबीनक मांग कयलनि। हॉस्टल में एहन घटना कोना किया भऽ रहल अछि एहि विषय में सरकार प्राथमिकताक संग अध्ययन कऽ ओकर व्यवस्थापन कयल जेबाक बात पर जोर देलक अछि। सांसद लोकनि देशक विभिन्न स्थान में अधिक भूस्खलन बाढ़ के कारण कतेको व्यक्ति सब घरबार विहीन भेल कतेको परिवार एखनो जोखिम युक्त अवस्था में रहल सहितक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करबैत जोखिम युक्त बस्ती सबके सुरक्षित स्थान में स्थानांतरण कयल जेबाक आ पीड़ित के उचित क्षतिपूर्ति तथा राहतक व्यवस्था करबाक मांग कयलनि। महिला हिंसा अंत के लेल कानूनी व्यवस्था करा बनबैत दोषी के कठोर सजाक व्यवस्था करबाक लेल सांसद लोकनि सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। प्रतिनिधि सभा काजुक बैठक के आकस्मिक समय में हुनका लोकनि खिसना ओ लोकनि हिंसाक घटना बढ़ रहला कारणे एहन व्यवस्था अपरिहार्य भेल बतौलनि। संगे ओ लोकनि सड़क सुरक्षा महिला तथा बालिका ऊपर होबय वाला हिंसा रोकबाक विदेश में मृत्यु भेनिहार सबके लाश स्वदेश अनबाक तथा विपत पीड़ित सबके तत्काल राहत उपलब्ध करबाक विषय में सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले बैंक तथा वित्तीय संस्थाक संचालक के अयोग्यता संबंधी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन में मात्र रखला पर कानूनी विरोधाभास उत्पन्न होबाक कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी ऐन बाफिया में स्पष्ट व्यवस्था कयल जेबाक बात बतौलनि अछि। अर्थ समिति के आजुक बैठक में नेपाल राष्ट्र बैंक 3 संशोधन विधेयक 2083 ऊपर के दफावार छलफल के क्रम में अर्थमंत्री वागले संबंधित विषय संबंधित ऐन में संबोधन कयल जेबाक बात बतौलनि अछि। ओ बाफियाक संबंधित व्यवस्था में संशोधन करबाक लेल अर्थ मंत्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय में प्रस्ताव पठा चुकल जानकारी देलनि। किछ नेपाल ऐन संशोधन करबाक लेल विधेयक मार्फत बाफियाक दफा 18(1)(ड) में आवश्यक संशोधन करबाक लेल प्रक्रिया आगू बढ़ाओल ओ बतौलनि। बैंक तथा वित्तीय संस्था संबंधी ऐन 2073 बाफियाक दफा 18 में संचालक अयोग्यता संबंधी व्यवस्था अछि। दफा 18 के उपदफा 1 के खंड ड में बैंक व वित्तीय संस्थाक संचालक होबाक लेल प्रचलित कानून अनुसार नियमनकारी निकाय कानून विपरीत कार्य कयल कई कार्यवाही कयल वा हुनके कार्यवाही भेल 5 वर्ष अवधि व्यतीत नहीं भेल व्यक्ति संचालक होबा में अयोग्य होबाक व्यवस्था कयल गेल अछि।
कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी टीकापुर घटना से संबंधित लाल आयोगक प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। थारू कल्याणकारिणी सभा रवि दिन काठमांडू में आयोजन कयल कार्यक्रम में मंत्री चौधरी टीकापुर घटनाक विषय में सतत सार्वजनिक न्यायोचित ढंग से समाधान खोजबाक बात बतौलन। थारू कल्याणकारिणी सभा हरेक वर्ष भादव सात गते टीकापुर विद्रोह दिवस के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करैत आयल अछि। एहि वर्ष सेहो टीकापुर विद्रोह आंदोलन के मांग मुद्दा एवं आप के निकास तथा नेपालक संविधानक अंतर्वस्तु में थारू समुदायक साझा सवाल आ संशोधन के आवश्यकता विषय में अंतर्क्रिया कार्यक्रम आयोजन कयलक अछि। कार्यक्रम में मंत्री चौधरी थारू समुदायक मांग तथा मुद्दा सरकार में बैस कर उठा रहल कहे थारू समुदायक अधिकार पहचान आ न्यायक सवाल में स्वयं निरंतर आवाज उठा रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ टीकापुर घटना से संबंधित लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक लेल पहल करबाक थारू समुदायक जायज मांग संबोधनक लेल सरकार गंभीर बतौलन। युवा श्रम तथा रोजगार मंत्री रामजी यादव सँ नेपालक लेल संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईक राजदूत अब्दुल्ला सईद मुबारक जारवान अल सांसी आइ शिष्टाचार भेंट कयलनि। सिंह दरबार स्थित मंत्रालय में भेल भेंट में हुनका लोकनिक बीच दू देश बीचक द्विपक्षीय श्रम संबंधी समझदारी तथा सहमतिक प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल संयुक्त कार्य समूहक बैठक शीघ्र आयोजन करबाक सहमति भेल अछि। भेंट में मंत्री यादव नेपाली श्रमिक के प्रहरी चारित्रिक प्रमाण पत्र संबंधी दू तरफा प्रक्रिया पूरा करबाक लेल व्यवस्था के सरल सहज होयब आवश्यक रहल बतौलन। वही अवसर पर राजदूत शाम सिंह नेपाली श्रमिकक हक हित आ अधिकारक विषय में यूएई निरंतर छलफल आ समन्वय कर रहल बताओल मंत्री यादव के सचिवालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत पूर्वाधार विकास समितिक बैठक में सांसद लोकनि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन तथा स्थायी नीतिक आधार पर निजी क्षेत्र के पूर्वाधार विकासक परियोजना सब में सहभागी कराओल जेबाक बात पर जोर देलनि अछि। समितिक आई सिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद लोकनि गंदगी व्यवस्थापन ऊर्जा जल विद्युत सहितक क्षेत्र में निजी क्षेत्रक सहभागिता बढ़ायब कानूनी सुधार आवश्यक रहल बतौलनि। सार्वजनिक निजी साझेदारी संबंध में भेल छलफल में सांसद लोकनि उद्योगक उत्पादन तथा बाजारीकरण में निजी क्षेत्रक लगानी बढ़ाओल जेबाक तथा लगानीक उद्देश्य आ एहिसँ प्राप्त उपलब्धि के पारदर्शी बनाओल जेबाक बात पर जोर देलनि। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेशक 8 जिला सहित 4 इलाका प्रहरी कार्यालय सबके शांति सुरक्षा स्थापना में सहयोग करबाक लेल 12 प्रहरी वैन प्रदान कयलक अछि। मध्य प्रदेशक गृह संचार तथा कानून मंत्रालय आई विशेष कार्यक्रमक बीच मध्य प्रदेशक 8 जिला के एक एक थान आ 4 इलाका प्रहरी कार्यालय के प्रहरी वैन प्रदान कयलक अछि। सप्तरीक शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 3 ट्रैफिक बाजार में 2 वर्षीय बालिका हत्या भेल घटना में ओकर सौतेनी सतबा माय संलग्नता रहल प्रारंभिक अनुसंधान से खुलल अछि। स्थानीय मोहम्मद इरफानक 2 वर्षीय बेटी खुशी खातून काल्हि भिनसर घर से हरायल छली। बालिका हरायल सूचना पौलाक बाद प्रहरी आफंत तथा स्थानीय वासिक सहयोग में खो तलाश करैत काल ओही दिन घर पाछू झाड़ी में मृत अवस्था में भेटल छल। घटना पश्चात प्रहरी अनुसंधानक लेल बालिकाक सतवा माय मुस्कान खातून के नियंत्रण में लेने छल। जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपेक्षक हेमराज घिमरे के अनुसार प्रारंभिक अनुसंधानक क्रम में सतबा रुबीना खातून संघक विवादक कारण मुस्कान बालिका हत्या कयल खुलल अछि। परसा राष्ट्रीय निकुंज में पाटे बाघक संख्या बढ़ला पर संरक्षण व्यवस्थापन के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अनुकूल बनेबाक लेल बाघ संरक्षण के लेल सुनिश्चित व्यवस्थापन अंतर्राष्ट्रीय मापदंड CATS प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरू भेल अछि। सन 2022 में 41 वैश बाघ रहल परसा निकुंज में सन 2026 के गणना अनुसार बाघ के संख्या 71 पहुँचलाक बाद संरक्षण उपलब्धि के दीर्घकालीन आ गुणस्तरीय व्यवस्थापन में रूपांतरण करबाक लेल CATS प्रक्रिया आगू बढ़ौलक अछि। विश्व संपदा सूची में सूचीकृत स्वयंभू में दिवंगत आफंतक स्मरण में विशेष पूजा अर्चना आई कयल गेल अछि। बौद्ध धर्मावलंबी 1 वर्ष भीतर दिवंगत भेल आफंतक स्मरण में परंपरागत बाजा छाजा सहित स्वयंभू में पूजा आजा कयलक अछि। ओ सब महिषक सिंह से बनल बाजा सेहो बजौने छल। श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से भाद्र शुक्ल प्रतिपदा धरि मनाओल जाय वाला गोला पर्व अंतर्गत काठमांडू पत्रिका आसपासक क्षेत्र से आयल भक्तजन सब स्वयंभू महाचेतक परिक्रमा का विधिपूर्वक पूजा अर्चना कयलक अछि।
जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर जंगल में नुका छिपा कर राखल एक थान कठुआ पिस्तौल से बरामद कैलक। जिला प्रहरी कार्यालय कंचनपुर से खड़ल प्रहरी टोली भीमदत्त नगर पालिका वार्ड नंबर 3 स्थित जंगल के झाड़ी में रहल नुका का एक थान कठुआ पिस्तौल साँझ बरामद कैल। प्रहरी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह थापा जानकारी दिलन। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरानक विदेश मंत्रालय दू फ्रांसेली कूटनीतिज्ञ ऊपर लगाओल गेल प्रतिबंध के जवाब में फ्रांस दूटा ईरानी कूटनीतिज्ञ के निष्कासन करबाक निर्णय कैल कहत गैरकानूनी जे कहिकऽ ओ कहलक अछि। रेडियो नेपाल सँ सुनै छलहुँ मैथिली भाषा में समाचार समाप्त भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा बैठक में सांसदों ने बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून बनाने पर दिया जोर। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कारके ने विश्वास का मत किया हासिल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने समाज में ईमानदारी और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर दिया जोर। नागढोंगा सुरंग मार्ग आज से छोटे चारपहिया वाहनों के लिए खुला। और अमेरिका के नेवादा में जंगल में लगी आग, 90,000 लोगों को घर खाली करने का निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने 12 की बालिका गरिमा चौधरी के बलात्कार के बाद हत्या मामले में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर परिवार को न्याय देने की मांग की। सांसदों ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उन्होंने सरकार से जघन्य अपराधों के कारणों का गंभीर अध्ययन कर उसके आधार पर प्रभावी कानून लागू करने का आग्रह किया। सांसदों ने एलपी गैस और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न होने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए बजट बढ़ाने, बाढ़ और भूस्खलन से नष्ट हुई खेती योग्य जमीन के संरक्षण तथा लोगों की समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में 4 विधेयकों को दफावार चर्चा के लिए संबंधित समितियों में भेजने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किए गए। इनमें संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक, सेवा शर्त और सुविधाओं से संबंधित संशोधन विधेयक, पासपोर्ट संशोधन विधेयक, मानव तस्करी तथा सामान तस्करी नियंत्रण संशोधन विधेयक और खनिज पदार्थ विधेयक शामिल हैं। बैठक में सांसदों ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा के साथ प्रभावी कानूनी व्यवस्था बनाने की मांग की। उन्होंने बच्चों की पहुंच में अश्लील और हिंसक ऑनलाइन सामग्री पहुंचने पर चिंता जताते हुए बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के स्पष्ट मानक बनाने और उन्हें लागू करने पर भी जोर दिया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल 9 भाद्र को दोपहर 1 बजे होगी। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कारके ने विश्वास का मत हासिल कर लिया है। आज प्रदेश सभा की बैठक में मुख्यमंत्री कारके के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 57 वोट पड़े, जो सदन के बहुमत से अधिक है। प्रस्ताव के विपक्ष में 22 वोट पड़े, जबकि 4 सांसद तटस्थ रहे। बैठक में कुल 83 सांसद उपस्थित थे। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण थापा मगर की नियुक्ति के खिलाफ दायर रिट याचिका पर उच्च अदालत पाटन की हेटौड़ा पीठ ने विपक्षियों के नाम कारण बताओ आदेश जारी किया है। न्यायाधीश बबीता उप्रेती की एकल पीठ ने आज प्रारंभिक सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की संवैधानिक वैधता पर उठाए गए सवालों को लेकर 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करने या न करने पर चर्चा के लिए दोनों पक्षों को आगामी 10 भाद्र को उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है। उस दिन की बहस के बाद अदालत इस मामले में अंतरिम आदेश देने या न देने का फैसला करेगी। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा है कि हमारे समाज को तकनीक से ज्यादा नैतिकता, सदाचार और ईमानदारी की जरूरत है। नेपाल जन प्रशासन संघ द्वारा आयोजित हेम बहादुर मल्ल सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तकनीकी और क्षमता दूसरों से हासिल करके भी इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन आचरण, नैतिकता और ईमानदारी व्यक्ति के अपने अंतर्मन से जुड़ी होती हैं। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि बदलते परिवेश में जनता की विकास संबंधी आकांक्षाओं को सुशासन के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने हेम बहादुर मल्ल सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रामकंठ माकजू श्रेष्ठ और रामेश्वर प्रसाद खनाल को बधाई देते हुए उनके सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना की। नागढुंगा सुरंग मार्ग आज से छोटे चारपहिया वाहनों के लिए खुला कर दिया गया है। धार्मिक और पर्यटकीय गंतव्य बाजुरा के बड़ी मालिका क्षेत्र में 4G सेवा का विस्तार किया गया है। नेपाल टेलीकॉम ने 4G सेवा शुरू करने के बाद आज से यहां मोबाइल और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा दी है। संचार सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को भी लाभ मिलेगा। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के नागरिकों को संचार के बुनियादी अधिकार से वंचित नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार देश के दुर्गम और पर्यटकीय क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण टेलीफोन और इंटरनेट सेवा पहुंचाने को प्राथमिकता दे रही है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: हजुर दर्शन,
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते बाबु।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ बाबु।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे, त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
3: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। सूचना तथा संचार मंत्री डॉक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा है कि सरकार नेपाल के विज्ञापन बाजार को स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक बनाने के लिए पूरे विज्ञापन चक्र में सुधार की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय विज्ञापन संघ नेपाल के पदाधिकारियों के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने कहा कि सरकारी विज्ञापनों के वितरण में अतीत में हुई आर्थिक अनियमितताओं को सरकार ने गंभीरता से लिया है। मंत्री तिमिल सिन्हा ने विज्ञापन क्षेत्र को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए नीतिगत सुधार प्रभावी ढंग से लागू करने तथा संचार और विज्ञापन क्षेत्र को रचनात्मक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग जरूरी बताया। उदयपुर की बिल्का नगरपालिका 5 स्थित मदन भंडारी लोकमार्ग पर स्कूल बस और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। आज सुबह सुपाड़े से लाल बाजार जा रहे ऑटो की विपरीत दिशा से आ रही सफल आदर्श इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल की बस से टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग घायल हुए थे। घायलों में बिल्का नगरपालिका 5 की करीब 34 वर्षीय मंदिरा मगर और एक अन्य महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 घायलों में 2 की हालत गंभीर और 1 की हालत मध्यम बताई गई है। सभी का इलाज धर स्थित बीपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में चल रहा है। पुलिस ने बस और उसके चालक को नियंत्रण में लेकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के नेवादा राज्य के रेनो शहर के उत्तर पश्चिमी इलाके में तेजी से फैली जंगली आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। तेज हवाओं और हवा की बदलती दिशा के कारण दमकल कर्मियों के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। हालात को देखते हुए अधिकारियों ने करीब 90,000 लोगों को प्रभावित इलाका खाली करने की अपील की है। आग में कम से कम 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 दमकल कर्मी और 3 आम नागरिक शामिल हैं। शनिवार को शुरू हुई आग अब तक 60 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक आग मानवीय गतिविधियों के कारण लगी, हालांकि इसके सटीक कारणों की जांच जारी है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। गिनी की राजधानी कोनाक्री में भारी बारिश के बाद कचरे का पहाड़ ढहकर आसपास के घरों पर जा गिरा। इस हादसे में कम 30 लोगों की मौत हो गई, वहीं 22 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा शहर के डार एस सलाम इलाके में स्थानीय समय अनुसार रात करीब 2 बजे हुआ। गिनी सरकार के मुताबिक भारी बारिश के बाद कचरे का ढेर अचानक ढह गया, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। सरकार ने राहत और बचाव अभियान के लिए सेना समेत बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को मौके पर तैनात किया है। स्थानीय मीडिया से बातचीत में एक महिला ने बताया कि हादसे में उसके 5 बच्चों की मौत हो गई। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे के नीचे और लोग दबे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे गिनी के प्रधानमंत्री अमादो ओरी बा ने स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले स्थानीय नेता लांसिने सीला ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि हादसे में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि अब तक 18 शवों को निकालकर मुर्दा घर भेजा जा चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा बैठक में सांसदों ने बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कानून बनाने पर दिया जोर। कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कुमार कारकी ने विश्वास का मत किया हासिल। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने समाज में ईमानदारी और नैतिक आचरण की आवश्यकता पर दिया जोर। नागढुंगा सुरंग मार्ग आज से छोटे चार पहिया वाहनों के लिए खुला और अमेरिका के नेवादा में जंगल में लगी आग 90,000 लोगों को घर खाली करने का निर्देश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
3: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
6: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही लिने मजाले चलाउने
7: *1415# डायल गर्नुहोस्।
5: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।

रेडियो नेपाल, नया नेपाल को समावेशी आवाज। राष्ट्रीय रेडियो, राष्ट्र को संचार।